0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, नेपाल के भाटेकोशी नदी में बुधवार 26 अगस्त को आई बाढ़ ने 3 जिलों में भारी तबाही मचाई, जिसमें कम से कम 165 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि सुरक्षा बलों के जवान और विदेशी पर्यटकों समेत बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। बाढ़ उस समय आई जब एक हिमस्खलन ने भाटेकोशी नदी की सहायक नदी लेहेंदे का बहाव रोक दिया। इसके बाद बाढ़ सबसे पहले चीन की सीमा के पास रसुआगढ़ी के नजदीक तिमोरे में पहुंची। सैकड़ों लोगों की आबादी वाले इस इलाके का बड़ा हिस्सा बह गया और इसके बाद बाढ़ का पानी नीचे की ओर तेजी से बढ़ने लगा। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने बताया कि प्रभावित लोगों तक आपात राहत पहुंचाई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र मानवीय राहत समन्वय कार्यालय ओचा ने बताया कि बाढ़ में बस्तियां, बाजार, सड़कें, पुल और जल विद्युत ढांचे बह गए हैं या क्षतिग्रस्त हुए हैं। कई इलाकों में सड़क संपर्क टूट गया है और बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई है। संयुक्त राष्ट्र के आपात राहत प्रमुख टॉम फ्लेचर ने बताया कि यूएन के केंद्रीय आपात प्रतिक्रिया कोष से शुरुआती तौर पर $20 लाख जारी किए गए हैं, ताकि आपात चिकित्सा सेवा, आश्रय और पानी उपलब्ध कराकर लोगों की जान बचाई जा सके। संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता स्टेफान दुजारिक ने बताया कि यूएन एजेंसियां और मानवीय सहायता साझीदार स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर राहत कार्यवाही में मदद कर रहे हैं और जरूरत बढ़ने पर अतिरिक्त मदद के लिए भी तैयार हैं। नेपाल के अधिकारियों के अनुसार लगभग 10,000 परिवारों को तत्काल राहत सहायता की जरूरत है। कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC में बुंडी बुग्यो इबोला प्रकोप की घोषणा को 100 दिन हो चुके हैं और महामारी अभूतपूर्व स्तर पर फैल रही है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि देश के पूर्वी हिस्सों व सीमाओं के पार संक्रमण का फैलाव रोकने के प्रयास और तेज करने होंगे। प्रकोप अब 6 प्रांतों तक फैल चुका है। इतुरी इसका केंद्र बना हुआ है, जहां करीब 85% मामले और 79% मौतें दर्ज की गई हैं। संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन समन्वय समूह ICG इबोला से प्रभावित और जोखिम वाले समुदाय की सुरक्षा के लिए DRC को एवेरबो टीके की 70,000 खुराकें उपलब्ध कराएगा। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: DR कांगो में इबोला का अब तक का सबसे घातक प्रकोप तेजी से फैल रहा है और संयुक्त राष्ट्र ने तत्काल अंतर्राष्ट्रीय सहायता की अपील की है। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार मई में प्रकोप घोषित होने के बाद से अब तक 5,290 लोग संक्रमित हुए हैं और 2,516 लोगों की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ इबोला समन्वयक जूलियन हार्नेस ने चेतावनी दी है कि राहत कार्रवाई के लिए धनराशि केवल अगले कुछ हफ्तों तक की ही बची है। उनके अनुसार हर देरी से ये प्रकोप और घातक होता जा रहा है। अब तक 160 स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुए हैं और 43 की मौत हुई है। पूर्वी DR कांगो में हिंसक टकराव, विस्थापन और कमजोर स्वास्थ्य सेवाओं के कारण प्रभावित इलाकों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन समन्वय समूह इबोला से निपटने के लिए एवेरबो टीके की 70,000 खुराकें उपलब्ध कराएगा। इनमें से 20,000 खुराकें क्लिनिकल परीक्षण के लिए और 50,000 स्वास्थ्य कर्मियों के लिए रखी गई हैं। WHO ने कहा है कि ये वैश्विक एकजुटता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, हालांकि बुंडी बुग्यो प्रकार के खिलाफ इस टीके की प्रभावशीलता अभी स्पष्ट नहीं है।
2: यूक्रेन में रूस के ताजा हमलों के साथ युद्ध और घातक होता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय ओचा के अनुसार अप्रैल 2022 के बाद अगस्त यूक्रेनी नागरिकों के लिए सबसे घातक महीना रहा। स्थानीय अधिकारियों से प्राप्त

0: बालवाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। यूएन ने कहा है कि आम लोगों और नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमले अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून का उल्लंघन है और इन्हें तुरंत रोका जाना चाहिए। यूक्रेन में मौजूद संयुक्त राष्ट्र राहत प्रमुख टॉम फ्लेचर ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कहा, टॉम फ्लेचर कह रहे हैं कि इस मिशन के दौरान मैंने घातक नई तकनीक और युद्ध के खतरनाक मेल का असर करीब से देखा। मैंने अग्रिम मोर्चे के पास रहने वाले लोगों की जिंदगी के बारे में भी बहुत कुछ जाना, जहां समुदाय एक बेहद कठिन सर्दी की तैयारी कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र राहत प्रमुख टॉम फ्लेचर के शब्द। उन्होंने कहा कि मानवीय सहायता के लिए वित्तीय सहयोग जारी रहना चाहिए, मगर सबसे ज्यादा जरूरत इस युद्ध को समाप्त करने की है। संयुक्त राष्ट्र ने पूर्ण, तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम की अपील दोहराई है।
1: गाजा, लेबनान और पश्चिमी तट में बिगड़ते हालात पर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है। 2 वर्ष तक चले इसराइल हमास युद्ध को रोकने वाली अक्टूबर 2025 की अंतिम युद्ध विराम योजना के बावजूद गाजा में लगभग हर दिन इसराइली हमले, गोलाबारी और मिसाइल प्रहार और हवाई हमले जारी हैं। संयुक्त राष्ट्र ने आगाह किया है कि दक्षिणी लेबनान में हिंसक टकराव के कारण विस्थापित हुए लगभग 8,60,000 लोग अपने घर लौट चुके हैं, लेकिन विस्थापन और मानवीय संकट की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
0: गाजा, लेबनान और कब्जे वाले पश्चिमी तट में बिगड़ते हालात पर संयुक्त राष्ट्र ने गहरी चिंता जताई है। यूएन एजेंसियों के अनुसार गाजा की 21 लाख आबादी में से 94% लोगों को आश्रय की जरूरत है। अधिकतर परिवार तंबुओं या अस्थायी ढांचों में रह रहे हैं, जहां ईंधन, बिजली और बुनियादी घरेलू सामान की भी भारी कमी है। मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने कहा है कि इजरायली पाबंदियों के कारण आश्रय सामग्री, भारी मशीनरी और अन्य जरूरी सामान गाजा पहुंचाने में बाधाएं बनी हुई हैं। इस बीच मलबे से निकाले गए 50 फलस्तीनियों के शवों को दफनाया गया है, जिनमें 19 बच्चे भी थे। यूएन साझेदारों ने गाजा में 3,250 से अधिक जोखिम वाले स्थलों पर कीट नियंत्रण अभियान भी चलाया है। लेबनान में यूनिफिल ने इसराइल द्वारा हवाई क्षेत्र के उल्लंघन, हवाई हमलों और बुनियादी ढांचे को ध्वस्त किए जाने की जानकारी दी है। पश्चिमी तट में नई अवैध इजरायली बस्तियों, सैन्य अभियानों और बढ़ती हिंसा पर भी संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है। महासचिव ने इसराइल से बस्ती विस्तार रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने की अपील की है।
1: आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे, जिन्हें प्रस्तुत कर रही थी अंशु शर्मा। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। संयुक्त राज्य अमेरिका से वैटिकन पधारे सेंट विंसेंट दे पॉल को समर्पित धर्म समाजी पुरोहितों, धर्म बहनों और लोक धर्मियों के प्रतिनिधियों का शुक्रवार को अभिवादन करते हुए संत पापा लियो 14वें ने कहा कि प्रार्थना और सामाजिक न्याय को अलग नहीं किया जा सकता। संपूर्ण अमेरिका में धर्म समाज के सेवा कार्यों की सराहना कर संत पापा ने कहा कि धर्म समाज के सदस्य अपनी उदार सेवाओं द्वारा इस पृथ्वी पर ईश राज्य के निर्माण और ईश्वर में विश्वास का शानदार साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। प्रार्थना का आग्रह करते हुए संत पापा ने सदस्यों से कहा, मैं आपको प्रभु ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को और गहरा करने के लिए प्रोत्साहन देता हूं, ताकि उनकी कृपा आपकी सेवा को रास्ता दिखाती रहे और उसे मजबूत करती रहे। विंसेंट डी पॉल ने दिखाया कि प्रार्थना और सामाजिक न्याय सिर्फ एक दूसरे के पूरक नहीं है, बल्कि वास्तव में एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। इसलिए मेरी आशा है कि आप उनके पद चिन्हों पर चलकर उनसे मदद मांगने के लिए लगातार अपने स्वर्गीय संरक्षक की ओर मुड़ेंगे। अपने विश्वपत्र दिलेक्सी ते का उल्लेख कर संत पापा ने कहा कि संत अगस्टिन ने निर्धनों और दीन दुखियों की सेवा और देखभाल की ख्रीस्त केंद्रित प्रकृति का पाठ सिखाया और यह माना कि जो लोग गरीबों की सेवा करते हैं उनके प्रति ईश्वर उदारता में पीछे नहीं रहेंगे। इसलिए हमारा विश्वास है कि जब प्रेम से दूसरों की देखभाल की जाती है तो इससे न केवल जरूरतमंदों की मदद होती है, बल्कि सेवा करने वाले का दिल भी ईश कृपा के प्रति खुल जाता है। संत पापा ने कहा, प्रिय मित्रों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सदैव खुद को अर्पित कर दें। इस तरह प्रभु की कृपा आपके मनोमस्तिष्क को अनवरत शुद्ध करेगी और आप अपने पड़ोसी में यीशु मसीह को अधिक आसानी से पहचान पाएंगे, उन लोगों में जिनकी आप सेवा करते हैं और जिनके साथ आप काम करते हैं। संत पापा ने कहा, स्मरण रखें कि मेरी प्रार्थनाएं सदैव आपके साथ और उन सब लोगों के साथ हैं जिनकी आप देखभाल करते हैं। संत विंसेंट डी पॉल धर्म समाज के सदस्यों पर मां मरियम की मध्यस्थता की याचना कर संत पापा ने सबको अपना आशीर्वाद प्रदान किया। लातिनी अमेरिका में मादक पदार्थों की आसक्ति के शिकार लोगों पर रोम में 25 से 27 तक संपन्न एक सम्मेलन के प्रतिभागियों ने गुरुवार को संत पापा लियो 14वें का साक्षात्कार कर उनका संदेश सुना। नशे की लत और युवाओं की आपराधिक भर्ती को संबोधित करने हेतु लैटिन अमेरिका और करीबियाई देशों के प्रतिनिधि एशिया, यूरोप और अफ्रीका के प्रतिनिधियों के साथ मिले तथा विचारों का आदान प्रदान हुआ। इसमें विशेष रूप से मादक पदार्थों से आसक्त लोगों के लिए रोकथाम, स्वास्थ्य लाभ और सामाजिक एकीकरण पर विशद चिंतन किया गया। लातिनी अमेरिका और करीबियाई देशों के कैथलिक धर्माधीक्षीय सम्मेलनों के संघ तथा लातिनी अमेरिका के लिए परम धर्म पीठीय मिशन एवं जीवन संबंधी परम धर्म पीठीय अकादमी ने संयुक्त रूप से इस सम्मेलन का आयोजन किया था। सम्मेलन के प्रतिभागियों को संबोधित कर संत पापा ने कहा कि किसी चीज का नशा या आसक्ति एक मुश्किल तथ्य है जो यह दर्शाता है कि इंसानियत को नजरअंदाज कर दिया गया है। यह विश्व की नाकामी का प्रदर्शन है। उन्होंने कहा कि युवाओं की पीड़ा को संबोधित करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रत्युत्तर की आवश्यकता है। समुदाय में रोकथाम, वैज्ञानिक सहायता, इंसानियत के साथ न्याय और उनके सबसे करीबी लोगों की देखभाल। उन्होंने कहा कि हमारा योगदान देखभाल, मौजूदगी और समुदाय की संरचना को फिर से बनाने की ओर होना चाहिए। संत पापा ने कहा कि मादक पदार्थों और उससे जुड़ी बुराइयों का सामना कोई भी अकेले रहकर नहीं कर सकता। इसके लिए कलीसिया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों को मिलकर काम करना होगा। नशे की लत और इससे जुड़े अपराधों की रोकथाम हेतु लातिनी अमेरिका के कैथलिक धर्माध्यक्षों तथा गैर सरकारी संगठनों के बीच सहयोग की संत पापा लियो ने सराहना की। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों की आसक्ति की समस्या के समाधान हेतु कलीसिया और गैर सरकारी संगठनों के सेवा कार्यों के साथ विज्ञान और विश्वास के मध्य सेतु निर्माण की भी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कलीसिया मादक पदार्थों की समस्या पर हस्तक्षेप तंत्रिका विज्ञान, मनोचिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य या जगह लेने के उद्देश्य से नहीं करती, बल्कि वह सुसमाचार से प्रेरित समाधानों को सुझाने के लिए इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करती है।
उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों की आसक्ति संबंधी समस्या को सुलझाने के लिए स्वयं कलीसिया के अंतर्गत तथा कैथोलिक कलीसिया के साथ अन्य ख्रिस्तीय संप्रदायों के सहयोग और समन्वय की नितांत आवश्यकता है। साथ ही युवाओं को उनकी जरूरतों और सपनों में साथ देने तथा जोड़ने के लिए एक सही और उपयुक्त आम भाषा का उपयोग करना आवश्यक है, तभी इस समस्या का हल ढूंढा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि द्वितीय वैटिकन महासभा ने परिवार की महत्ता का उल्लेख कर इसे घरेलू कलीसिया का नाम दिया है, जिसका सम्मान किया जाना तथा जिसे टूटने से बचाना हमारा प्राथमिक कार्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए परिवार प्रेरिताई पर ध्यान दिया जाए, ताकि माता पिताओं के व्यस्त जीवन में बच्चे और युवा गलत रास्तों पर न भटक जाए। संत पापा लियो 14वें 28 सितंबर को फ्रांस के मेट्स शहर की प्रेरिति की यात्रा करेंगे। इस यात्रा की पृष्ठभूमि में मेट्स के कैथोलिक महाधर्माध्यक्ष फिलिप बलो ने वैटिकन मीडिया से बातचीत कर बताया कि संपूर्ण शहर संत पापा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आगामी 25 से 28 सितंबर तक संत पापा लियो 14वें फ्रांस की प्रेरिति की यात्रा करने वाले हैं। पेरिस महाधर्म प्रांत तथा शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघीय संगठन की भेंट के उपरांत 28 सितंबर को संत पापा फ्रांस और जर्मनी की सीमा के बीच स्थित मेट्स शहर का दौरा करेंगे। महाधर्माध्यक्ष फिलिप बलो ने कहा कि उन्हें मोजेल और मेट्स के निवासियों के इतिहास को देखते हुए बहुत प्रसन्नता और गर्व महसूस हुआ। यह एक ऐसी धरती है जिसने 3 युद्ध, 2 विश्व युद्ध और 2 बार कब्जा झेला है, और जो आज खुद को मेल मिलाप और भाईचारे की जमी के रूप में प्रदर्शित करती है। उन्होंने कहा कि पुराने दुश्मन दोस्त बन गए हैं, वे लड़ने के बजाय मिलकर काम कर रहे हैं। महाधर्माध्यक्ष ने कहा कि जर्मनी के साथ संबंध अति मधुर हैं, इसलिए यहाँ संत पापा का आगमन एक बहुत मजबूत संदेश है। उन्होंने कहा कि मेट्स के लोग संत पापा लियो के स्वागत को अति उत्सुक हैं, जिन्होंने अपने परमाधीक्षी काल की शुरुआत से ही निशस्त्र और निरस्त्रीकरण शांति पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही हम शांति के पुरुष और शांति निर्माता बनने का प्रयास कर रहे हैं, और संत पापा लियो की यात्रा इस उद्यम में हमें साहस प्रदान करेगी। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, नेपाल के भाटेकोशी नदी में बुधवार 26 अगस्त को आई बाढ़ ने 3 जिलों में भारी तबाही मचाई, जिसमें कम से कम 165 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि सुरक्षा बलों के जवान और विदेशी पर्यटकों समेत बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। बाढ़ उस समय आई जब एक हिमस्खलन ने भाटेकोशी नदी की सहायक नदी लेहेंदे का बहाव रोक दिया। इसके बाद बाढ़ सबसे पहले चीन की सीमा के पास रसुआगढ़ी के नजदीक तिमोरे में पहुंची। सैकड़ों लोगों की आबादी वाले इस इलाके का बड़ा हिस्सा बह गया और इसके बाद बाढ़ का पानी नीचे की ओर तेजी से बढ़ने लगा। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने बताया कि प्रभावित लोगों तक आपात राहत पहुंचाई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र मानवीय राहत समन्वय कार्यालय ओचा ने बताया कि बाढ़ में बस्तियां, बाजार, सड़कें, पुल और जल विद्युत ढांचे बह गए हैं या क्षतिग्रस्त हुए हैं। कई इलाकों में सड़क संपर्क टूट गया है और बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई है। संयुक्त राष्ट्र के आपात राहत प्रमुख टॉम फ्लेचर ने बताया कि यूएन के केंद्रीय आपात प्रतिक्रिया कोष से शुरुआती तौर पर $20 लाख जारी किए गए हैं, ताकि आपात चिकित्सा सेवा, आश्रय और पानी उपलब्ध कराकर लोगों की जान बचाई जा सके। संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता स्टेफान दुजारिक ने बताया कि यूएन एजेंसियां और मानवीय सहायता साझीदार स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर राहत कार्यवाही में मदद कर रहे हैं और जरूरत बढ़ने पर अतिरिक्त मदद के लिए भी तैयार हैं। नेपाल के अधिकारियों के अनुसार लगभग 10,000 परिवारों को तत्काल राहत सहायता की जरूरत है। कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC में बुंडी बुग्यो इबोला प्रकोप की घोषणा को 100 दिन हो चुके हैं और महामारी अभूतपूर्व स्तर पर फैल रही है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि देश के पूर्वी हिस्सों व सीमाओं के पार संक्रमण का फैलाव रोकने के प्रयास और तेज करने होंगे। प्रकोप अब 6 प्रांतों तक फैल चुका है। इतुरी इसका केंद्र बना हुआ है, जहां करीब 85% मामले और 79% मौतें दर्ज की गई हैं। संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन समन्वय समूह ICG इबोला से प्रभावित और जोखिम वाले समुदाय की सुरक्षा के लिए DRC को एवेरबो टीके की 70,000 खुराकें उपलब्ध कराएगा। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: DR कांगो में इबोला का अब तक का सबसे घातक प्रकोप तेजी से फैल रहा है और संयुक्त राष्ट्र ने तत्काल अंतर्राष्ट्रीय सहायता की अपील की है। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार मई में प्रकोप घोषित होने के बाद से अब तक 5,290 लोग संक्रमित हुए हैं और 2,516 लोगों की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ इबोला समन्वयक जूलियन हानिस ने चेतावनी दी है कि राहत कार्रवाई के लिए धनराशि केवल अगले कुछ हफ्तों तक की ही बची है। उनके अनुसार हर देरी से ये प्रकोप और घातक होता जा रहा है। अब तक 160 स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुए हैं और 43 की मौत हुई है। पूर्वी DR कांगो में हिंसक टकराव, विस्थापन और कमजोर स्वास्थ्य सेवाओं के कारण प्रभावित इलाकों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन समन्वय समूह इबोला से निपटने के लिए एवेरबो टीके की 70,000 खुराकें उपलब्ध कराएगा। इनमें से 20,000 खुराकें क्लिनिकल परीक्षण के लिए और 50,000 स्वास्थ्य कर्मियों के लिए रखी गई हैं। WHO ने कहा है कि ये वैश्विक एकजुटता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, हालांकि बुंडी बुग्यो प्रकार के खिलाफ इस टीके की प्रभावशीलता अभी स्पष्ट नहीं है।
2: यूक्रेन में रूस के ताजा हमलों के साथ युद्ध और घातक होता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय ओचा के अनुसार अप्रैल 2022 के बाद अगस्त यूक्रेनी नागरिकों के लिए सबसे घातक महीना रहा। स्थानीय अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों ने गुरुवार को यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के इलाकों को निशाना बनाया, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई और 40 से ज्यादा घायल हो गए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने इन हमलों की कड़ी निंदा की। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के इलाकों पर रूसी मिसाइल हमलों में कम से कम 17 लोगों की मौत हुई और 40 से अधिक घायल हुए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हमलों की कड़ी निंदा की है। रिहायशी इमारतों के साथ एक स्कूल, बच्चों का अस्पताल और बालवाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। यूएन ने कहा है कि आम लोगों और नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमले अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून का उल्लंघन है और इन्हें तुरंत रोका जाना चाहिए। यूक्रेन में मौजूद संयुक्त राष्ट्र राहत प्रमुख टॉम फ्लेचर ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कहा, टॉम फ्लेचर कह रहे हैं कि इस मिशन के दौरान मैंने घातक नई तकनीक और युद्ध के खतरनाक मेल का असर करीब से देखा। मैंने अग्रिम मोर्चे के पास रहने वाले लोगों की जिंदगी के बारे में भी बहुत कुछ जाना, जहां समुदाय एक बेहद कठिन सर्दी की तैयारी कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र राहत प्रमुख टॉम फ्लेचर के शब्द। उन्होंने कहा कि मानवीय सहायता के लिए वित्तीय सहयोग जारी रहना चाहिए, मगर सबसे ज्यादा जरूरत इस युद्ध को समाप्त करने की है। संयुक्त राष्ट्र ने पूर्ण, तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम की अपील दोहराई है।
2: गाजा, लेबनान और पश्चिमी तट में बिगड़ते हालात पर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है। 2 वर्ष तक चले इसराइल हमास युद्ध को रोकने वाली अक्टूबर 2025 की अंतिम युद्ध विराम योजना के बावजूद गाजा में लगभग हर दिन इसराइली हमले, गोलाबारी और मिसाइल प्रहार और हवाई हमले जारी हैं। संयुक्त राष्ट्र ने आगाह किया है कि दक्षिणी लेबनान में हिंसक टकराव के कारण विस्थापित हुए लगभग 8,60,000 लोग अपने घर लौट चुके हैं, लेकिन विस्थापन और मानवीय संकट की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: गाजा, लेबनान और कब्जे वाले पश्चिमी तट में बिगड़ते हालात पर संयुक्त राष्ट्र ने गहरी चिंता जताई है। यूएन एजेंसियों के अनुसार गाजा की 21 लाख आबादी में से 94% लोगों को आश्रय की जरूरत है। अधिकतर परिवार तंबुओं या अस्थायी ढांचों में रह रहे हैं, जहां ईंधन, बिजली और बुनियादी घरेलू सामान की भी भारी कमी है। मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने कहा है कि इजरायली पाबंदियों के कारण आश्रय सामग्री, भारी मशीनरी और अन्य जरूरी सामान गाजा पहुंचाने में बाधाएं बनी हुई हैं। इस बीच मलबे से निकाले गए 50 फलस्तीनियों के शवों को दफनाया गया है, जिनमें 19 बच्चे भी थे। यूएन साझेदारों ने गाजा में 3,250 से अधिक जोखिम वाले स्थलों पर कीट नियंत्रण अभियान भी चलाया है। लेबनान में यूनिफिल ने इसराइल द्वारा हवाई क्षेत्र के उल्लंघन, हवाई हमलों और बुनियादी ढांचे को ध्वस्त किए जाने की जानकारी दी है। पश्चिमी तट में नई अवैध इजरायली बस्तियों, सैन्य अभियानों और बढ़ती हिंसा पर भी संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है। महासचिव ने इसराइल से बस्ती विस्तार रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने की अपील की है।
2: आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे, जिन्हें प्रस्तुत कर रही थी अंशु शर्मा। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। संयुक्त राज्य अमेरिका से वैटिकन पधारे सेंट विंसेंट दे पॉल को समर्पित धर्म समाजी पुरोहितों, धर्म बहनों और लोक धर्मियों के प्रतिनिधियों का शुक्रवार को अभिवादन करते हुए संत पापा लियो 14वें ने कहा कि प्रार्थना और सामाजिक न्याय को अलग नहीं किया जा सकता। संपूर्ण अमेरिका में धर्म समाज के सेवा कार्यों की सराहना कर संत पापा ने कहा कि धर्म समाज के सदस्य अपनी उदार सेवाओं द्वारा इस पृथ्वी पर ईश राज्य के निर्माण और ईश्वर में विश्वास का शानदार साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। प्रार्थना का आग्रह करते हुए संत पापा ने सदस्यों से कहा, मैं आपको प्रभु ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को और गहरा करने के लिए प्रोत्साहन देता हूं, ताकि उनकी कृपा आपकी सेवा को रास्ता दिखाती रहे और उसे मजबूत करती रहे। विंसेंट दे पॉल ने दिखाया कि प्रार्थना और सामाजिक न्याय सिर्फ एक दूसरे के पूरक नहीं है, बल्कि वास्तव में एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। इसलिए मेरी आशा है कि आप उनके पद चिन्हों पर चलकर उनसे मदद मांगने के लिए लगातार अपने स्वर्गीय संरक्षक की ओर मुड़ेंगे। अपने विश्व पत्र दिलेक्सी ते का उल्लेख कर संत पापा ने कहा कि संत अगस्टिन ने निर्धनों और दीन दुखियों की सेवा और देखभाल की ख्रीस्त केंद्रित प्रकृति का पाठ सिखाया और यह माना कि जो लोग गरीबों की सेवा करते हैं उनके प्रति ईश्वर उदारता में पीछे नहीं रहेंगे। इसलिए हमारा विश्वास है कि जब प्रेम से दूसरों की देखभाल की जाती है तो इससे न केवल जरूरतमंदों की मदद होती है, बल्कि सेवा करने वाले का दिल भी ईश कृपा के प्रति खुल जाता है। संत पापा ने कहा, प्रिय मित्रों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सदैव खुद को अर्पित कर दें। इस तरह प्रभु की कृपा आपके मनोमस्तिष्क को अनवरत शुद्ध करेगी और आप अपने पड़ोसी में यीशु मसीह को अधिक आसानी से पहचान पाएंगे, उन लोगों में जिनकी आप सेवा करते हैं और जिनके साथ आप काम करते हैं। संत पापा ने कहा, स्मरण रखें कि मेरी प्रार्थनाएं सदैव आपके साथ और उन सब लोगों के साथ हैं जिनकी आप देखभाल करते हैं। संत विंसेंट दे पॉल धर्म समाज के सदस्यों पर मां मरियम की मध्यस्थता की याचना कर संत पापा ने सबको अपना आशीर्वाद प्रदान किया। लातिनी अमेरिका में मादक पदार्थों की आसक्ति के शिकार लोगों पर रोम में 25 से 27 तक संपन्न एक सम्मेलन के प्रतिभागियों ने गुरुवार को संत पापा लियो 14वें का साक्षात्कार कर उनका संदेश सुना। नशे की लत और युवाओं की आपराधिक भर्ती को संबोधित करने हेतु लैटिन अमेरिका और करीबियाई देशों के प्रतिनिधि एशिया, यूरोप और अफ्रीका के प्रतिनिधियों के साथ मिले तथा विचारों का आदान प्रदान हुआ। इसमें विशेष रूप से मादक पदार्थों से आसक्त लोगों के लिए रोकथाम, स्वास्थ्य लाभ और सामाजिक एकीकरण पर विशद चिंतन किया गया। लातिनी अमेरिका और करीबियाई देशों के कैथलिक धर्माधीक्षीय सम्मेलनों के संघ तथा लातिनी अमेरिका के लिए परम धर्म पीठीय मिशन एवं जीवन संबंधी परम धर्म पीठीय अकादमी ने संयुक्त रूप से इस सम्मेलन का आयोजन किया था। सम्मेलन के प्रतिभागियों को संबोधित कर संत पापा ने कहा कि किसी चीज का नशा या आसक्ति एक मुश्किल तथ्य है जो यह दर्शाता है कि इंसानियत को नजरअंदाज कर दिया गया है। यह विश्व की नाकामी का प्रदर्शन है। उन्होंने कहा कि युवाओं की पीड़ा को संबोधित करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रत्युत्तर की आवश्यकता है। समुदाय में रोकथाम, वैज्ञानिक सहायता, इंसानियत के साथ न्याय और उनके सबसे करीबी लोगों की देखभाल। उन्होंने कहा कि हमारा योगदान देखभाल, मौजूदगी और समुदाय की संरचना को फिर से बनाने की ओर होना चाहिए। संत पापा ने कहा कि मादक पदार्थों और उससे जुड़ी बुराइयों का सामना कोई भी अकेले रहकर नहीं कर सकता। इसके लिए कलीसिया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों को मिलकर काम करना होगा। नशे की लत और इससे जुड़े अपराधों की रोकथाम हेतु लातिनी अमेरिका के कैथलिक धर्माध्यक्षों तथा गैर सरकारी संगठनों के बीच सहयोग की संत पापा लियो ने सराहना की। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों की आसक्ति की समस्या के समाधान हेतु कलीसिया और गैर सरकारी संगठनों के सेवा कार्यों के साथ विज्ञान और विश्वास के मध्य सेतु निर्माण की भी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कलीसिया मादक पदार्थों की समस्या पर हस्तक्षेप तंत्रिका विज्ञान, मनोचिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य या जगह लेने के उद्देश्य से नहीं करती, बल्कि वह सुसमाचार से प्रेरित समाधानों को सुझाने के लिए इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करती है।
उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों की आसक्ति संबंधी समस्या को सुलझाने के लिए स्वयं कलीसिया के अंतर्गत तथा कैथोलिक कलीसिया के साथ अन्य ख्रिस्तीय संप्रदायों के सहयोग और समन्वय की नितांत आवश्यकता है। साथ ही युवाओं को उनकी जरूरतों और सपनों में साथ देने तथा जोड़ने के लिए एक सही और उपयुक्त आम भाषा का उपयोग करना आवश्यक है, तभी इस समस्या का हल ढूंढा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि द्वितीय वैटिकन महासभा ने परिवार की महत्ता का उल्लेख कर इसे घरेलू कलीसिया का नाम दिया है, जिसका सम्मान किया जाना तथा जिसे टूटने से बचाना हमारा प्राथमिक कार्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए परिवार प्रेरिताई पर ध्यान दिया जाए, ताकि माता पिताओं के व्यस्त जीवन में बच्चे और युवा गलत रास्तों पर न भटक जाएं। संत पापा लियो 14वें 28 सितंबर को फ्रांस के मेत्स शहर की प्रेरिति की यात्रा करेंगे। इस यात्रा की पृष्ठभूमि में मेत्स के कैथोलिक महाधर्माध्यक्ष फिलिप बलो ने वैटिकन मीडिया से बातचीत कर बताया कि संपूर्ण शहर संत पापा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आगामी 25 से 28 सितंबर तक संत पापा लियो 14वें फ्रांस की प्रेरित की यात्रा करने वाले हैं। पेरिस महाधर्म प्रांत तथा शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघीय संगठन की भेंट के उपरांत 28 सितंबर को संत पापा फ्रांस और जर्मनी की सीमा के बीच स्थित मेत्स शहर का दौरा करेंगे। महाधर्माध्यक्ष फिलिप बलो ने कहा कि उन्हें मोजेल और मेत्स के निवासियों के इतिहास को देखते हुए बहुत प्रसन्नता और गर्व महसूस हुआ। यह एक ऐसी धरती है जिसने 3 युद्ध, 2 विश्व युद्ध और 2 बार कब्जा झेला है, और जो आज खुद को मेल मिलाप और भाईचारे की जमीन के रूप में प्रदर्शित करती है। उन्होंने कहा कि पुराने दुश्मन दोस्त बन गए हैं, वे लड़ने के बजाय मिलकर काम कर रहे हैं। महाधर्माध्यक्ष ने कहा कि जर्मनी के साथ संबंध अति मधुर हैं, इसलिए यहाँ संत पापा का आगमन एक बहुत मजबूत संदेश है। उन्होंने कहा कि मेत्स के लोग संत पापा लियो के स्वागत को अति उत्सुक हैं, जिन्होंने अपने परमाधीक्षी काल की शुरुआत से ही निशस्त्र और निरस्त्रीकरण शांति पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही हम शांति के पुरुष और शांति निर्माता बनने का प्रयास कर रहे हैं, और संत पापा लियो की यात्रा इस उद्यम में हमें साहस प्रदान करेगी। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पवित्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर।

0: चिरिदौर अवृत होकर न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
2: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेष कर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद के पहला भेद, गैब्रियल दूत माता मरियम को यीशु के जन्म का संदेश देते हैं,
3: मतलब संत पापा और कलीसिया के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
3: मतलब बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: भैया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का तीसरा भेद, हमारे प्रभु जन्मते हैं,
2: मतलब विश्व शांति के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का चौथा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं,
2: मतलब पापियों के मन फिराव के लिए।
0: पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो।
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: आनंद का पांचवा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में पाए जाते हैं,
2: मतलब शोधक अग्नि की दुखित आत्माओं के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है,

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता
1: हम पर दया कर,
0: पवित्र आत्मा ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: संत मरियम
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वर की पवित्र माँ
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्त की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वरीय कृपा की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति निर्मल माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति शुद्ध माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुंवारी माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: निष्कलंक माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रिय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रशंसनीय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सुसमति की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सृष्टिकर्ता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: मुक्तिदाता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति चौकस कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्तुति योग्य कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शक्तिमती कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दयालु कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मनिष्ठ कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हमारे आनंद का मूल
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पवित्र आत्मा का मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भक्ति का उत्तम पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आध्यात्मिक गुलाब
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दाऊद का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हस्तिदंत का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ण मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संधि की मंजूषा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भोर का तारा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: रोगियों का स्वास्थ्य
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पापियों की शरण
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दुखियों का दिलासा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्तियों की सहायता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्गदूतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्म पुरखों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: नबियों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रेरितों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शहीदों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मवीरों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति पवित्र माला की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शांति की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर।

0: मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक से दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं रविवार की आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं, मानव के रूप में हमें शारीरिक दुख, पीड़ा और कष्ट से भय लगता है। यही कारण है कि हमारे जीवन की प्रार्थना में हम एक विशेष निवेदन यह करते हैं कि ईश्वर हमें विभिन्न तरह की दुर्घटनाओं, विपत्तियों और हानिकारक चीजों से बचाए रखें। हम में से ऐसा कोई भी नहीं जो अपने जीवन में विपत्तियों और मुसीबतों की चाह रखता हो। वर्ष के 22वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए पाठ हमारे लिए दुखों की चर्चा करते हैं। मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों से अपने ऊपर आने वाले घोर दुख की चर्चा करते हैं। वे ऐसा अपने शिष्यों से एक बार नहीं बल्कि तीन तीन बार करते हैं कि किस तरह उन्हें नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों के द्वारा प्रताड़ना का शिकार होना पड़ेगा। एक सच्चे मानव के रूप में यह हमारे लिए यीशु के हृदय में व्याप्त एक भय को व्यक्त करता है। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने लिए ईश्वर से कृपा की याचना करें कि वे हमें अपने जीवन के दुखों में अपनी योजना को देखने, उन्हें स्वीकारने और उनमें अपनी उपस्थिति को देखने हेतु मदद करें। हम अपने जीवन के छोटे बड़े दुखों को यीशु के दुख भोग की याद करते हुए अपने दैनिक जीवन में साहसपूर्वक वहन कर सकें। हम जीवन में अपने दुखों के कारण हताश व निराश ना हों बल्कि अपने को उस जीवनदायी ईश्वर के विश्वास में अडिग बनाए रखें जहाँ से हमारे लिए जीवन की सारी चीजें सांत्वना, खुशी और प्रेम स्वरूप आती हैं।
1: यीशु अपने शिष्यों को यह समझाने लगे कि मुझे यरूशलेम जाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों की ओर से बहुत दुख उठाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। पेत्रुस यीशु को अलग ले गया और उन्हें यह कहते हुए समझाने लगा, ईश्वर ऐसा न करे, प्रभु यह आप पर कभी नहीं बीतेगी। इस पर यीशु ने मुड़कर पेत्रुस से कहा, हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो। तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। इसके बाद यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वही उसे सुरक्षित रख सकेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है, क्योंकि मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा और वह प्रत्येक को अपने कर्म का फल देगा।
0: श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमारे जीवन की दुख भरी परिस्थितियों में सांत्वना का कारण बने जिससे हम उन चुनौती भरी स्थितियों में भी अपने को ईश्वर के संग संयुक्त रख सकें। श्रोताओं, नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए दुख के कारण नबी में व्याप्त एक द्विधा भरी स्थिति को व्यक्त करता है जिसके कारण वे ईश्वर के वचनों को घोषित करना नहीं चाहते और ना ही भविष्यवाणी करने की सोचते हैं। लेकिन ईश वचन नबी के अंतरतम में एक धधकती आग बन उसके हड्डी हड्डी में समा जाती है। वह उसे अपने में दबा नहीं रख सकते बल्कि वे वचनों से प्रेरित अपने कार्यों को पूरा करने हेतु आगे बढ़ते हैं। श्रोताओं, यह हमारे लिए नबी के जीवन में होने वाले व्यवहार परिवर्तन को देखने में मदद करता है। दुनिया में व्याप्त अपमान, विरोध और हिंसा के कारण वे नबी के उत्तरदायित्वों से अपने को दूर करने की सोचते हैं, लेकिन ईश वचन की सजीव शक्ति उसे अपने कार्यों में निष्ठावान बने रहने को मदद करती है। वे नहीं चाहते हुए भी ईश्वर के कार्यों को पूरा करने हेतु आगे बढ़ते हैं क्योंकि यह उनके अंदर ज्वाला की तरह धधकती है। ईश्वर के जीवित वचन जिसका पान उन्हें कराया गया उन्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। यह हम सबों के संग भी होता है। हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को नहीं करने की ठान लेते हैं, विशेष करके वे उत्तरदायित्व जो हमारे लिए कठिन लगते हैं। हम उनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईश्वर अंदर ही अंदर हमें उन्हें पूरा करने को प्रेरित करते और हम उन्हें पूरा करने को उत्साह में आगे बढ़ते हैं। श्रोताओं, रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ हमें अपने जीवन में इसी मनोभाव को समझने में मदद करता है। प्रेरित रोमी समुदाय से अनुरोध करते हैं कि वे इस संसार के अनुकूल नहीं बल्कि सारी चीजों को एक नई दृष्टि से देखें और अपने स्वभाव में परिवर्तन लाएं। ऐसा करने के द्वारा वे इस बात को जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहते हैं और उनकी दृष्टि में क्या भला, सुग्रह्य और सर्वोत्तम है। श्रोताओं, इस संसार के मनोभाव हमें अपने को जीवन की कठिन बातों से दूर रखने को प्रेरित करते हैं या हमें उन बातों और चीजों का आलिंगन करने को अग्रसर करते हैं जो सहज और सरल हैं, जिनके द्वारा हम शान शौकत का अनुभव करते हैं, जो शायद थोड़े ही समय के लिए खुशी लाती है। यह हमें शरीर के व्यसन में संलिप्तता का प्रलोभन लाता है। श्रोताओं, सुसमाचार में हमने मानवीय स्वभाव के बारे में सुना, जो प्रलोभन के रूप में पेत्रुस द्वारा यीशु के समक्ष रखा जाता है और जिसके लिए उन्हें यीशु से कड़ी फटकार सुननी पड़ती है। यीशु पिता के द्वारा अपने को दी गई प्रेरिताई के संबंध में अपने शिष्यों से जिक्र करते हैं। उस प्रेरिताई को पूरा करने में उन्हें किन किन बातों का सामना करना होगा, उसका परिणाम उनके लिए क्या होगा, यह हमारे लिए यीशु के जीवन में आने वाली घटनाओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराता है। लेकिन पेत्रुस उन्हें कहते हैं कि ये बातें आप पर कभी नहीं बीतेंगी। यह कहते हुए पेत्रुस यीशु को सहज मार्ग का चुनाव करने को प्रलोभन देते हैं। श्रोताओं, यीशु अपने पीछे आने वालों से कहते हैं, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। यीशु की इन बातों को हमने कई बार अपने जीवन में सुना है, जो हमारा ध्यान ख्रिस्तीय होने की चुनौती प्रस्तुत करता है। यह हमें यीशु की प्रेरिताई के बारे में कहती है, जो सहज नहीं है। इसके साथ ही यह हमारी प्रेरिताई के बारे में भी कहती है, जो यीशु का अनुसरण करने की चाह रखते हैं। क्रूस ढोने का अर्थ हमारे लिए अपने दैनिक जीवन की कठिनाइयों, दुखों और तकलीफों को गले लगाना है। क्रूस हमारे लिए भारी है और सदैव भारी रहेगा, लेकिन यही हमारे जीवन की सच्चाई है कि यीशु के संग चलते हुए हम अपने क्रूस को हल्का पाते हैं, क्योंकि हम नहीं बल्कि स्वयं यीशु ख्रिस्त हमारे क्रूस को ढोते और हमारे संग आगे चलते हैं। वे क्रूस ढोने में हमारी मदद करते हैं। वहीं आत्म त्याग करने का अर्थ हमारे लिए चीजों का चुनाव करने से है। क्या हम अपने लिए सहज और हल्की चीजों का चुनाव करते हैं? क्या हम भारी चीजों को दूसरों के लिए छोड़ देते हैं? क्या हम दूसरों की खुशी हेतु अपनी खुशी का त्याग करते हैं? आइए हम माता मरियम से निवेदन करें कि वे हमारे लिए अपने बेटे यीशु ख्रिस्त से प्रार्थना करें, जिससे हम आत्म त्याग करते हुए अपना क्रूस ढोने के योग्य हो सकें।

0: आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। वैटिकन ने आने वाले महीनों के लिए पोप लियो 14वें के धर्म विधि कार्यक्रमों की सूची जारी की है, जिसके अनुसार वे अमोरिस लेतित्सा के वर्षगांठ पर संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में क्रिस्त्याग अर्पित करेंगे। पोप लियो 14वें बुधवार 14 अक्टूबर को प्रेरितिक प्रबोधन अमोरिस लेतित्सा की 10वीं वर्षगांठ पर पूर्वाह्न 10 बजे संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में पौत्र मिस्सा अर्पित करेंगे। प्रबोधन को परिवार पर धर्म सभा के बाद प्रकाशित किया गया था। अमोरिस लेतित्सा 19 मार्च 2016 को संत जोसेफ के पर्व पर पोप फ्रांसिस द्वारा आज की दुनिया में परिवारों के सामने आने वाले चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई परिवार पर 2 साल के सिनेट के बाद प्रकाशित हुए थे। इस साल इसके प्रकाशन के 10 साल बाद पोप लियो ने दुनिया भर के धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्षों को रोम में मीटिंग पर बुलाया है, ताकि अमोरिस लेतित्सा की शिक्षाओं की जांच एवं चर्चा की जा सके और आज परिवारों को सुसमाचार कैसे बताया जाए इस पर चर्चा हो सके। आने वाले हफ्तों में संत पापा कई धर्म विधि कार्यक्रमों को संपन्न करेंगे, जिसमें 7 सितंबर को रोम के निकट एक छोटे गांव जेना जानो में भली सलाह की माता मरियम के तीर्थ स्थल पर शाम 6 बजे क्रिस्त्याग अर्पित करना भी शामिल है। इससे पहले संत पापा अपने चुनाव के ठीक 2 दिन बाद 10 मई 2025 को तीर्थस्थल गए थे। उसके बाद 25 से 28 सितंबर को पोप लियो 14वें फ्रांस की प्रेरितिक यात्रा करेंगे। 4 दिनों की प्रेरितिक यात्रा में वे पेरिस, लूर्द एवं मेट्स में क्रिस्त्याग अर्पित करेंगे। अंत में 8 अक्टूबर को वे परमधम पीठे विश्वविद्यालयों के लिए शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत है तो शाम 6 बजे संत पेत्रुस महागिरजा घर में क्रिस्त्याग अर्पित करेंगे। भारत के धर्मदक्षों ने नेपाल के बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रार्थना एवं उदार दान की अपील की है। नेपाल चीन बॉर्डर इलाके में आई भयंकर बाढ़ एवं भूस्खलन की प्राकृतिक त्रासदी के बाद भारतीय कार्तिक धर्मदक्ष सम्मेलन ने कहा कि भारत की कार्तिक कलीसिया प्रभावित सभी लोगों के साथ दुख एवं एकजुटता के साथ खड़ी है, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई और हजारों लापता है। भारतीय कार्तिक धर्मदक्ष सम्मेलन ने एक बयान में कहा, हम संत पिता पोप लियो 14वें के साथ शोक संतप्त परिवारों, घायलों और उन सभी लोगों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने इस रास्ते में अपने घर एवं जीविका खो दी है। जैसे संत पापा ने पीड़ितों को अपनी आध्यात्मिक सामीप्य का आश्वासन दिया है, वैसे ही हम भी भारत की कलीसिया के रूप में दुख की इस घड़ी में अपने भाइयों और बहनों के करीब हैं। प्रेस कार्यालय द्वारा 28 अगस्त को जारी बयान में भारत में कार्तिक कलीसिया की ओर से CCPI के अध्यक्ष कार्डिनल फिलिप नेरी फेराओ ने सभी याचकों, लोक धर्मियों, धर्म संघियों, संस्थानों और सद्भावना रखने वाले लोगों से प्रार्थना, करुणा और व्यवहारिक मदद के साथ जैसा बन पड़े इस संकट का जवाब देने का आह्वान किया है।
1: आज शनिवार 29 अगस्त को शाम 6 बजे संत पापा लियो 14वें कास्टिल गंडोल्फो के झील की माता मरियम गिरजा घर में पवित्र मिसा समारोह का अनुष्ठान करेंगे और जुलूस में भाग लेंगे। संत पापा लियो इतिहास के पहले परमाध्यक्ष होंगे जो नाव से कास्टिल गंडोल्फो में झील की माता मरियम के त्योहार के जुलूस में भाग लेंगे। वे उस झील को पार करेंगे जो 400 सालों से परमाध्यक्षों के गर्मियों के घर का बैकग्राउंड रहा है। पवित्र मिसा समारोह के अंत में संत पापा और विश्वासी गण छोटे गिरजाघर से निकलेंगे और झील की माता मरियम की प्रतिमा को जुलूस में सड़क के किनारे ट्रापिकाना जगह तक ले जाएंगे। माता मरियम की प्रतिमा को एक नाव में लादा जाएगा। संत पापा भी नाव पर चढ़ेंगे और नाव पास के जॉर्जियो बीच की जगह पर जाएगी। संत पापा और झील की माता मरियम की प्रतिमा के साथ स्थानीय परंपरा के अनुसार 1 दर्जन नावें होंगी और बुधवार 26 अगस्त को नेपाल में बाढ़ से तिब्बत के करीब विशाल क्षेत्र को प्रभावित करने वाली घटना के लिए अपना दुख एक टेलीग्राम में व्यक्त करने के बाद संत पापा लियो 14वें ने आपदा प्रभावित आबादी की सबसे जरूरी आवश्यकताओं के लिए नेपाल के प्रेरितिक राजदूतावास के साथ सहमति व्यक्त करते हुए वित्तीय सहायता भेजा। इस योगदान से नेपाल कारितास को मदद मिलेगी जो प्रेरितिक विकारियट के निर्देशन में काम करती है। उदार सेवा के लिए बने विभाग के प्रीफेक्ट महाधर्माध्यक्ष लुइस ने कहा कि यह पहली मदद है जिसे संत पापा दूसरे मौकों की तरह लोगों की शुरुआती मदद के लिए भेजना चाहते थे। यह संत पापा की नजदीकी और कोमलता पहुंचाने का शीघ्र और ठोस संकेत है, खासकर सबसे कमजोर लोगों तक। ताजा आंकड़ों के अनुसार प्रभावित इलाकों में 630 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और करीब 3000 लोग लापता हैं, जिनमें 500 से ज्यादा विदेशी शामिल हैं। और संत पापा लियो 14वें ने नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम की मृत्यु पर राजा हाकोन अष्टम और नॉर्वे के लोगों को अपनी संवेदनाएं भेजा। राजा हेराल्ड पंचम की शुक्रवार सुबह 6:35 पर ओस्लो विश्वविद्यालय अस्पताल में मृत्यु हो गई। उन्हें पिछले हफ्ते गंभीर रक्त विकार के इलाज के लिए राष्ट्रीय अस्पताल ले जाया गया था। राजा की मृत्यु के कुछ घंटों बाद संत पापा लियो ने राजा हाकोन अष्टम को उनके पिता की मौत पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए एक टेलीग्राम भेजा। संदेश में उन्होंने लिखा कि राजा हेराल्ड की मृत्यु की खबर सुनकर उन्हें दुख हुआ और उन्होंने नए राजा, शाही परिवार के सदस्यों और नॉर्वे के सभी लोगों के प्रति दिल से संवेदनाएं भेजा। देश के लिए उनकी कई सालों की समर्पित सेवा को ध्यान में रखते हुए मुझे उम्मीद है कि इसका फल मिलता रहेगा। मैं दिवंगत राजा की आत्मा की शांति के लिए अपनी प्रार्थनाओं का भरोसा देता हूँ। अंत में संत पापा ने ईश्वर से सांत्वना और शांति का आशीर्वाद मांगा। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं रविवारीय आराधना विधि चिंतन भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं, मानव के रूप में हमें शारीरिक दुख, पीड़ा और कष्ट से भय लगता है। यही कारण है कि हमारे जीवन की प्रार्थना में हम एक विशेष निवेदन यह करते हैं कि ईश्वर हमें विभिन्न तरह की दुर्घटनाओं, विपत्तियों और हानिकारक चीजों से बचाए रखें। हम में से ऐसा कोई भी नहीं जो अपने जीवन में विपत्तियों और मुसीबतों की चाह रखता हो। वर्ष के 22वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए पाठ हमारे लिए दुखों की चर्चा करते हैं। मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों से अपने ऊपर आने वाले घोर दुख की चर्चा करते हैं। वे ऐसा अपने शिष्यों से एक बार नहीं बल्कि तीन बार करते हैं कि किस तरह उन्हें नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों के द्वारा प्रताड़ना का शिकार होना पड़ेगा। एक सच्चे मानव के रूप में यह हमारे लिए यीशु के हृदय में व्याप्त एक भय को व्यक्त करता है। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने लिए ईश्वर से कृपा की याचना करें कि वे हमें अपने जीवन के दुखों में अपनी योजना को देखने, उन्हें स्वीकारने और उनमें अपनी उपस्थिति को देखने हेतु मदद करें। हम अपने जीवन के छोटे बड़े दुखों को यीशु के दुख भोग की याद करते हुए अपने दैनिक जीवन में साहसपूर्वक वहन कर सकें। हम जीवन में अपने दुखों के कारण हताश व निराश ना हों बल्कि अपने को उस जीवनदायी ईश्वर के विश्वास में अडिग बनाए रखें जहां से हमारे लिए जीवन की सारी चीजें सांत्वना, खुशी और प्रेम स्वरूप आती हैं।
1: यीशु अपने शिष्यों को यह समझाने लगे कि मुझे यरूशलेम जाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों की ओर से बहुत दुख उठाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। पेत्रुस यीशु को अलग ले गया और उन्हें यह कहते हुए समझाने लगा, ईश्वर ऐसा न करे, प्रभु यह आप पर कभी नहीं बीतेगी। इस पर यीशु ने मुड़कर पेत्रुस से कहा, हट जाओ शैतान।

0: शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो। तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। इसके बाद यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वही उसे सुरक्षित रख सकेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है, क्योंकि मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा और वह प्रत्येक को अपने कर्म का फल देगा।
1: श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमारे जीवन की दुख भरी परिस्थितियों में सांत्वना का कारण बने, जिससे हम उन चुनौती भरी स्थितियों में भी अपने को ईश्वर के संग संयुक्त रख सकें। श्रोताओं, नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए दुख के कारण नबी में व्याप्त एक द्विधा भरी स्थिति को व्यक्त करता है, जिसके कारण वे ईश्वर के वचनों को घोषित करना नहीं चाहती और ना ही भविष्यवाणी करने की सोचते हैं, लेकिन ईश वचन नबी के अंतरतम में एक धधकती आग बन उसके हड्डी हड्डी में समा जाती है। वह उसे अपने में दबा नहीं रख सकते, बल्कि वे वचनों से प्रेरित अपने कार्यों को पूरा करने हेतु आगे बढ़ते हैं। श्रोताओं, यह हमारे लिए नबी के जीवन में होने वाले व्यवहार परिवर्तन को देखने में मदद करता है। दुनिया में व्याप्त अपमान, विरोध और हिंसा के कारण वे नबी के उत्तरदायित्वों से अपने को दूर करने की सोचते हैं, लेकिन ईश वचन की सजीव शक्ति उसे अपने कार्यों में निष्ठावान बने रहने को मदद करती है। वे नहीं चाहते हुए भी ईश्वर के कार्यों को पूरा करने हेतु आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यह उनके अंदर ज्वाला की तरह धधकती है। ईश्वर के जीवित वचन जिसका पान उन्हें कराया गया उन्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। यह हम सबों के संग भी होता है। हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को नहीं करने की ठान लेते हैं, विशेष करके वे उत्तरदायित्व जो हमारे लिए कठिन लगते हैं। हम उनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईश्वर अंदर ही अंदर हमें उन्हें पूरा करने को प्रेरित करते और हम उन्हें पूरा करने को उत्साह में आगे बढ़ते हैं। श्रोताओं, रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ हमें अपने जीवन में इसी मनोभाव को समझने में मदद करता है। प्रेरित रोमी समुदाय से अनुरोध करते हैं कि वे इस संसार के अनुकूल नहीं बल्कि सारी चीजों को एक नई दृष्टि से देखें और अपने स्वभाव में परिवर्तन लाएं। ऐसा करने के द्वारा वे इस बात को जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहते हैं और उनकी दृष्टि में क्या भला, सुग्रह्य और सर्वोत्तम है। श्रोताओं, इस संसार के मनोभाव हमें अपने को जीवन की कठिन बातों से दूर रखने को प्रेरित करते हैं, या हमें उन बातों और चीजों का आलिंगन करने को अग्रसर करते हैं जो सहज और सरल हैं, जिनके द्वारा हम शान शौकत का अनुभव करते हैं, जो शायद थोड़े ही समय के लिए खुशी लाती है। यह हमें शरीर के व्यसन में संलिप्तता का प्रलोभन लाता है। श्रोताओं, सुसमाचार में हमने मानवीय स्वभाव के बारे में सुना, जो प्रलोभन के रूप में पेत्रुस द्वारा यीशु के समक्ष रखा जाता है और जिसके लिए उन्हें यीशु से कड़ी फटकार सुननी पड़ती है। यीशु पिता के द्वारा अपने को दी गई प्रेरिताई के संबंध में अपने शिष्यों से जिक्र करते हैं। उस प्रेरिताई को पूरा करने में उन्हें किन किन बातों का सामना करना होगा, उसका परिणाम उनके लिए क्या होगा, यह हमारे लिए यीशु के जीवन में आने वाली घटनाओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराता है। लेकिन पेत्रुस उन्हें कहते हैं कि ये बातें आप पर कभी नहीं बीतेंगी। यह कहते हुए पेत्रुस यीशु को सहज मार्ग का चुनाव करने को प्रलोभन देते हैं। श्रोताओं, यीशु अपने पीछे आने वालों से कहते हैं, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। यीशु की इन बातों को हमने कई बार अपने जीवन में सुना है, जो हमारा ध्यान ख्रिस्तीय होने की चुनौती प्रस्तुत करता है। यह हमें यीशु की प्रेरिताई के बारे में कहती है, जो सहज नहीं है। इसके साथ ही यह हमारी प्रेरिताई के बारे में भी कहती है, जो यीशु का अनुसरण करने की चाह रखते हैं। क्रूस ढोने का अर्थ हमारे लिए अपने दैनिक जीवन की कठिनाइयों, दुखों और तकलीफों को गले लगाना है। क्रूस हमारे लिए भारी है और सदैव भारी रहेगा, लेकिन यही हमारे जीवन की सच्चाई है कि यीशु के संग चलते हुए हम अपने क्रूस को हल्का पाते हैं, क्योंकि हम नहीं बल्कि स्वयं यीशु ख्रिस्त हमारे क्रूस को ढोते और हमारे संग आगे चलते हैं। वे क्रूस ढोने में हमारी मदद करते हैं। वहीं आत्म त्याग करने का अर्थ हमारे लिए चीजों का चुनाव करने से है। क्या हम अपने लिए सहज और हल्की चीजों का चुनाव करते हैं? क्या हम भारी चीजों को दूसरों के लिए छोड़ देते हैं? क्या हम दूसरों की खुशी हेतु अपनी खुशी का त्याग करते हैं? आइए हम माता मरियम से निवेदन करें कि वे हमारे लिए अपने बेटे यीशु ख्रिस्त से प्रार्थना करें, जिससे हम आत्म त्याग करते हुए अपना क्रूस ढोने के योग्य हो सकें।

0: आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। वैटिकन ने आने वाले महीनों के लिए पोप लियो 14वें के धर्म विधि कार्यक्रमों की सूची जारी की है, जिसके अनुसार वे अमोरिस लेतिसिया के वर्षगांठ पर संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में ख्रिस्त्याग अर्पित करेंगे। पोप लियो 14वें बुधवार 14 अक्टूबर को प्रेरितिक प्रबोधन अमोरिस लेतिसिया की 10वीं वर्षगांठ पर पूर्वाह्न 10 बजे संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में पौत्र मिस्सा अर्पित करेंगे। प्रबोधन को परिवार पर धर्म सभा के बाद प्रकाशित किया गया था। अमोरिस लेतिसिया 19 मार्च 2016 को सेंट जोसेफ के पर्व पर पोप फ्रांसिस द्वारा आज की दुनिया में परिवारों के सामने आने वाले चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई परिवार पर 2 साल के सिनेट के बाद प्रकाशित हुए थे। इस साल इसके प्रकाशन के 10 साल बाद पोप लियो ने दुनिया भर के धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्षों को रोम में मीटिंग पर बुलाया है, ताकि अमोरिस लेतिसिया की शिक्षाओं की जांच एवं चर्चा की जा सके और आज परिवारों को सुसमाचार कैसे बताया जाए इस पर चर्चा हो सके। आने वाले हफ्तों में संत पापा कई धर्म विधि कार्यक्रमों को संपन्न करेंगे, जिसमें 7 सितंबर को रोम के निकट एक छोटे गांव जेनाजानो में भली सलाह की माता मरियम के तीर्थ स्थल पर शाम 6 बजे ख्रिस्त्याग अर्पित करना भी शामिल है। इससे पहले संत पापा अपने चुनाव के ठीक 2 दिन बाद 10 मई 2025 को तीर्थस्थल गए थे। उसके बाद 25 से 28 सितंबर को पोप लियो 14वें फ्रांस की प्रेरितिक यात्रा करेंगे। 4 दिनों की प्रेरितिक यात्रा में वे पेरिस, लूर्द एवं मेड्स में ख्रिस्त्याग अर्पित करेंगे। अंत में 8 अक्टूबर को वे परमधम पीठ विश्वविद्यालयों के लिए शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत है तो शाम 6 बजे संत पेत्रुस महागिरजाघर में ख्रिस्त्याग अर्पित करेंगे। भारत के धर्माध्यक्षों ने नेपाल के बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रार्थना एवं उदार दान की अपील की है। नेपाल चीन बॉर्डर इलाके में आई भयंकर बाढ़ एवं भूस्खलन की प्राकृतिक त्रासदी के बाद भारतीय कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन ने कहा कि भारत की कार्तिक कलीसिया प्रभावित सभी लोगों के साथ दुख एवं एकजुटता के साथ खड़ी है, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई और हजारों लापता है। भारतीय कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन ने एक बयान में कहा, हम संत पिता पोप लियो 14वें के साथ शोक संतप्त परिवारों, घायलों और उन सभी लोगों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने इस रास्ते में अपने घर एवं जीविका खो दी है। जैसे संत पापा ने पीड़ितों को अपनी आध्यात्मिक सामीप्य का आश्वासन दिया है, वैसे ही हम भी भारत की कलीसिया के रूप में दुख की इस घड़ी में अपने भाइयों और बहनों के करीब हैं। प्रेस कार्यालय द्वारा 28 अगस्त को जारी बयान में भारत में कार्तिक कलीसिया की ओर से CCPI के अध्यक्ष कार्डिनल फिलिप नेरी फेराओ ने सभी याचकों, लोकधर्मियों, धर्म संघियों, संस्थानों और सद्भावना रखने वाले लोगों से प्रार्थना, करुणा और व्यवहारिक मदद के साथ जैसा बन पड़े इस संकट का जवाब देने का आह्वान किया है।
1: आज शनिवार 29 अगस्त को शाम 6 बजे संत पापा लियो 14वें कास्टिल गंडोल्फो के झील की माता मरियम गिरजाघर में पौत्र मिसा समारोह का अनुष्ठान करेंगे और जुलूस में भाग लेंगे। संत पापा लियो इतिहास के पहले परमाध्यक्ष होंगे जो नाव से कास्टिल गंडोल्फो में झील की माता मरियम के त्योहार के जुलूस में भाग लेंगे। वे उस झील को पार करेंगे जो 400 सालों से परमाध्यक्षों के गर्मियों के घर का बैकग्राउंड रहा है। पवित्र मिसा समारोह के अंत में संत पापा और विश्वासी गण छोटे गिरजाघर से निकलेंगे और झील की माता मरियम की प्रतिमा को जुलूस में सड़क के किनारे ट्रापिकाना जगह तक ले जाएंगे। माता मरियम की प्रतिमा को एक नाव में लादा जाएगा। संत पापा भी नाव पर चढ़ेंगे और नाव पास के जॉर्जियो बीच की जगह पर जाएगी। संत पापा और झील की माता मरियम की प्रतिमा के साथ स्थानीय परंपरा के अनुसार 1 दर्जन नावें होंगी और बुधवार 26 अगस्त को नेपाल में बाढ़ से तिब्बत के करीब विशाल क्षेत्र को प्रभावित करने वाली घटना के लिए अपना दुख एक टेलीग्राम में व्यक्त करने के बाद संत पापा लियो 14वें ने आपदा प्रभावित आबादी की सबसे जरूरी आवश्यकताओं के लिए नेपाल के प्रेरितिक राजदूतावास के साथ सहमति व्यक्त करते हुए वित्तीय सहायता भेजा। इस योगदान से नेपाल कारितास को मदद मिलेगी जो प्रेरितिक विकारियट के निर्देशन में काम करती है। उदार सेवा के लिए बने विभाग के प्रीफेक्ट महाधर्माध्यक्ष लुइस ने कहा कि यह पहली मदद है जिसे संत पापा दूसरे मौकों की तरह लोगों की शुरुआती मदद के लिए भेजना चाहते थे। यह संत पापा की नजदीकी और कोमलता पहुंचाने का शीघ्र और ठोस संकेत है, खासकर सबसे कमजोर लोगों तक। ताजा आंकड़ों के अनुसार प्रभावित इलाकों में 630 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और करीब 3000 लोग लापता हैं, जिनमें 500 से ज्यादा विदेशी शामिल हैं। और संत पापा लियो 14वें ने नार्वे के राजा हेराल्ड पंचम की मृत्यु पर राजा हाकोन अष्टम और नार्वे के लोगों को अपनी संवेदनाएं भेजा। राजा हेराल्ड पंचम की शुक्रवार सुबह 6:35 पर ओस्लो विश्वविद्यालय अस्पताल में मृत्यु हो गई। उन्हें पिछले हफ्ते गंभीर रक्त विकार के इलाज के लिए राष्ट्रीय अस्पताल ले जाया गया था। राजा की मृत्यु के कुछ घंटों बाद संत पापा लियो ने राजा हाकोन अष्टम को उनके पिता की मौत पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए एक टेलीग्राम भेजा। संदेश में उन्होंने लिखा कि राजा हेराल्ड की मृत्यु की खबर सुनकर उन्हें दुख हुआ और उन्होंने नए राजा, शाही परिवार के सदस्यों और नार्वे के सभी लोगों के प्रति दिल से संवेदनाएं भेजा। देश के लिए उनकी कई सालों की समर्पित सेवा को ध्यान में रखते हुए मुझे उम्मीद है कि इसका फल मिलता रहेगा। मैं दिवंगत राजा की आत्मा की शांति के लिए अपनी प्रार्थनाओं का भरोसा देता हूँ। अंत में संत पापा ने ईश्वर से सांत्वना और शांति का आशीर्वाद मांगा। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।